0: kas maka kejazat jadi per tadi khair.
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़.

खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में बुड़ी जे मुकाबले तां हिक गोल तां शिकस्त ॾेई आलमी चैंपियन बणजी वियो। स्पेन जे रांदीगर फेरन टोर्स शानदार गोल करे टीम खे 16 सालनि बाद ॿियो भेरो चैंपियन बणाए छॾियो। मैच जो फैसलाती गोल इज़ाफ़ी वक़्त जे ॿिए हाफ़ में थियो। अर्जेंटीना जे गोलकीपर मार्टिन शानदार कारकर्दगीअ मुज़ाहिरो कंदे केतिरा ई यकीनी गोल बचाया। वर्ल्ड कप जे 8 मैचनि दौरान का बि टीम स्पेन ख़िलाफ़ बरतरी हासिल न करे सघी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन जे फाते टीम खे ट्रॉफी पेश कई। अर्जेंटीना जे रांदीकरनि खे चांदीअ जा तमगा ॾिना विया। ग्राउंड में स्पेन जे रांदीकरनि जो जशन। वर्ल्ड कप में शिकस्त ते अर्जेंटीना जो कप्तान मेसी लुड़क लाड़े वेठो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह स्पेन खे फेवरेट करार ॾिनो हो। वॾे वज़ीर स्पेन जी हिमायत लाइ शौक़ीननि सां गॾु कराचीअ जे स्टेडियम में वॾी स्क्रीन ते मैच ॾिठी। कराचीअ जे 15 वॾियुनि स्क्रीननि ते फुटबॉल जो मैच ॾेखारियो वियो। शहरनि जे वॾे अंग में स्क्रीन ते फुटबॉल मैच ॾिठी। उडेरो लाल स्टेशन वेझो कराचीअ खां 50 वेंदड़ माल गाॾीअ जूं बोगियूं पटड़ीअ तां लही वियूं। अप ऐं डाउन रेलवे ट्रैक 24 कलाक लाइ बंदि। कराकरम, तेज़गाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियनि ट्रेनुनि खे मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते रोकियो वियो। वहाब शाह रेलवे स्टेशन वटि माल गाॾीअ जूं केतिरियूं बोगियूं पटड़ीअ तां लहण सबबि ट्रेनुनि जी अचु वञु मुतासिर थी वई। TS रेलवे कराचीअ चवणु आहे त हादसे सबबि अप ऐं डाउन रेलवे ट्रैक मुकमल तौरु मुअतल आहे। रेलवे ट्रैफिक 24 कलाकनि ताईं मुअतल रहण जो इम्कान। ट्रेनुनि जी अचु वञु 24 कलाक ताईं मुअतल रहंदी। कराकरम एक्सप्रेस खे हैदराबाद, अलामा इक़बाल एक्सप्रेस खे कोटड़ी स्टेशन ते रोकियो वियो आहे। पाकिस्तान एक्सप्रेस खे लांडी, तेज़गाम एक्सप्रेस डिग रोड ऐं फरीदाबाद एक्सप्रेस खे कैंट स्टेशन ते रोकियो वियो आहे। अवाम मौक़ो ॾिनो त कश्मीर जोहर फोरम ते आवाज़ उथारींदासीं। आज़ाद कश्मीर ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ठाहींदासीं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारीअ जो कोटलीअ में जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुटो ज़रदारीअ चयो त पीपल्स पार्टी कश्मीर जो केस पूरी दुनिया में विढ़ियो। FIR कटराईंदड़नि खे बख़्श न कबो। गिलगित बल्तिस्तान जीअं कश्मीरनि जे हक़नि लाइ जिदोजहद करे रहिया आहियूं। आज़ाद कश्मीर जे अवाम खे हक़ हकमियत, हक़ मिल्कियत ऐं हक़ रोज़गार ॾियारींदासीं। बेनज़ीर भुटो चयो जिते कश्मीरनि जो पघर वहंदो उते असांजो रतु वहंदो। शहीद ज़ुल्फ़कार भुटो असांखे सेखारियो त कश्मीरनि जो फ़ैसिलो सिर्फ़ कश्मीर ई कंदा। बिलावल भुटो ज़रदारी वोट ख़ातिर नफ़रत न पखिड़े क़ौमी लीडर थी ॻाल्हियूं करे। ख्वाजा आसिफ़ बाबा संदसि बयान मुनासिबु न हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जे सियासी मशीर राणा सना लाइ चयो त बिलावल भुटो जूं तकीरूं हालतूं ख़राबु करे सघनि थियूं। हू इशारनि में जॉइंट एक्शन कमेटीअ जे पाबंदी वारे फ़ैसिले जी मुखालफ़त करे रहियो आहे। जॉइंट एक्शन कमेटीअ ते आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ पाबंदी मड़ी। वफ़ाक़ी हुकूमत हिमायत कई हुई। मुस्लिम लीग नून जी कंहिंखे लत हणी कढण जी रिवायत न हुई न आहे। बिलावल भुटो ज़रदारी कश्मीर में नून लीग जे वज़ीरनि जे भड़कयल भाउ खे विसाए रहियो आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण जो राणा सनाला जे बयान ते रदि अमल। शर्जील मेमण चयो त वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे गैर ज़िमेवारनि बयाननि सां कश्मीर में नाकारी माहौल पैदा थी रहियो आहे। नून लीग जे वज़ीर गैर संजीदगीअ वारी सियासत सां कश्मीरी अवाम जी तोहीन कई। वफ़ाक़ी वज़ीर पंहिंजे बयाननि ते माज़रत करण खां बि लवाए रहिया आहिनि। बिलावल भुटो ज़रदारी हिकु क़ौमी अॻवान तौरु हक़ीक़ी किरदारु अदा करे रहियो आहे।

0: हक जी जंग बाबत नूर नियाज़ी बयान जो अफ़सोसनाक ऐं मज़म्मत जोॻो आहे। हक जी जंग पाकिस्तान जी तारीख़ी कामयाबी आहे। पीटीआई बानी ऐं संदसि कुटुंब जो हदफ़ पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइणु आहे। नूरीन जे बयान मां वाज़ थियो त उहे पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ आहिनि। अता तारड़ लाहौर में ख़िताब कंदे चयो त नूरीन जे बयान ते अवाम में कावड़ आहे। भारतीय मीडिया खेसि वॾी कवरेज ॾिनी। हिन जी सियासत दफ़न थी वई आहे। कश्मीर में हिजरत करे आयलनि जूं सीटूं केर बि ख़तमु नथो करे सघे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं वेंज़वेला जे परॾेही वज़ीरनि विच में फ़ोन ते राब्तो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पारां वेंज़वेला में ज़िलज़िले सबबि जानी नुक़सान ते ताज़ियत जो इज़हार। परॾेही वज़ीर इसहाक डार चयो त उमेद आहे त वेंज़वेला जल्द बहालीअ तरफ़ अची वेंदो। पाकिस्तान ॾुखे वक़्त में वेंज़वेला जी हुकूमत ऐं आवाम सां गॾु बीठल आहे। परॾेही वज़ीर पाकिस्तान तर्फ़ां हमदर्दी ऐं एके जे इज़हार ते थोरा मञा। वेंज़वेला पारां अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान जी हाकारी किरदार जी साराह। DGISPR जे समर कैंप 2026 में शरीक शागिर्दनि सां ख़ासि वेहक पूरे मुल्क जे 18 खां वधीक शहरनि जा 9 ऐं 12 जमायत जा 4,000 खां वधीक शागिर्द शरीक। DGISPR ख़ासि वेहक में क़ौमी सलामती ऐं दहशतगर्दीअ चैलेंज ते तफ़सीली रोशनी विधी। शागिर्दनि जो चवण हो त असांखे मुल्क खे पेश ईंदड़ अंदरूनी ऐं परॾेही सिक्योरिटी चैलेंजेस बाबति असराइती आगाही मिली। बलोचिस्तान में भारतीय प्राक्सी फितनतुल हिंदुस्तान ऐं फितनतुल ख़ारिज जे नापाक किरदार बाबति आगाह कयो वियो। हिन दौर में ग़लति मालूमात ऐं प्रोपेगंडा तेज़ीअ सां पखिड़जण बाबति आगाही ज़रूर आहे। बबरलो में अॻुवा ऐं गुम थी वियल ॿारनि जे बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी कैंप 24 ॾींहं बि जारी। मुज़ाहिरीन पारां मुतालबा न वञण जी सूरत में क़ौमी शाहराह ऐं रेलवे ट्रैक बंदि करण जो चिता। अॻवाणनि चयो त वाइदनि ते अमल नाहे थियो। ख़ातिरी कराइण बावजूदि का बि अहम अॻबराई साम्हूं न आई। पुलिस रोज़ जे बुनियाद ते जांच बाबति आगाही ॾियण जो वाइदो कयो हो, उहो बि पूरो न कयो पियो वञे। पुलिस ॿारनि जे वारसनि ते दॿाउ विझी रही आहे। खेनि धमकियूं ॾिनी पियूं वञनि। ॿारनि जे अॻुवा ऐं दरिया ते धाड़े ख़िलाफ़ जीए सिंध महाज जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा धरणा। कंदकोट, सन, ठुल, कुनरी, फ़क़ीराबाद ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। हैदराबाद में बि सुजाग ॿार तहरीक पारां अॻुवा थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी वई। सिंध जे पाणीअ ते धाड़े ऐं 28 तरमीम ख़िलाफ़ रैली। अॻवाणनि चयो त सिंध में मासूम ॿारनि जी अॻवा करण तोड़ी ॿारनि सां ज़ियातुनि जा वाकिया मामूल बणिजी विया आहिनि। पाणी खोट सबबि सिंध में बेरोज़गारी गुरबत वधी रही आहे। पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

ਸਾਥੀ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੁਣਦੇ।

0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्टों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

கோட்டமே ஓவனான அக்ரபுல வரீத் மத்துன ஆவேந்தாஸ் மா

घरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजन से सचू की सूमरा ओ जय सतिय सतु न छडियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न लजाई जा सागल सदाई उहा

কথা মুখ ঘামে

अमेरिका जा ईरान ते ना ही रात वे हमला जारी अमेरिकी फौज के सेंटकॉम जो चवण है ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स फिजाई दिफाई ड्रोन्स लॉन्च साइट्स के निशानों बनाए पो ईरानी मीडिया मूजिब तब्रीज चाबहार सिरक हरमुजगान बुशहर ए कोनाक में हमला किया गया पासावर इनकलाब पारा अबना हरमुज में ब तेल जा जहाज तबाह करने की दावा उदन के अकबा एयरपोर्ट से अमेरिकी जहाज से बैलिस्टिक मिजाइल से हमलो किया वो शाम के इलाके अल्तनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर से भी हमले की दावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है अमेरिकी फौज रात ईरान से शदीद हमला किया ईरान से हमला अमेरिकी फौजन के मारने जो रद्दअमल है फौजन के बाजी वजन से ढो दुख थो है बाजी वेल अमेरिकी फौजी इन मकसद के लिए वेही रहा हुआ तो ईरान एटमी हथियार न रखी सके ईरान के धमकी दई सकजे थी न लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असराए थी आलमी ताकत तौर उभरियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चयो है ईरान अगु का वधिक मजबूत है ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकरो न थो करे सकजे असी दिफाई चैंपियन स्पेन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में बुढ़िए एक शिकस्त दई आलमी चैंपियन बनी वो महादंगल में स्पेन के रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम के 16 साल बाद बो भेरो चैंपियन बनाए छो मैच जो फैसला है तो गोल इजाफी वक्त के बे हाफ में थो अर्जेंटाइन के गोलकीपर मार्टिनेस शानदार कारकर्दगी जो मुजाहरों कदे केतरा ही यकीनी गोल बचाया वर्ल्ड कप के 8 मैच दौरान का भी टीम स्पेन खिलाफ बर्तरी हासिल न कर सकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन की फाते टीम की ट्रॉफी पेश कई अर्जेंटीना के रांदीगर के चांदी जहा तमगा दिना वह ग्राउंड में स्पेन के रांदीगर जो जश्न वर्ल्ड कप में शिकस्त थे अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो

0: पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 12 जो रुझान 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स की घटताई रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट्स से डिठो वो ओडेरोला स्टेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल न थी सकिया ट्रेन्स मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया वा मालगाड़ी के ट्रेक हटाने रेलवे ट्रैफिक बहाल करने जो कोशिशों जारी कराकुरम तेजगाम ए पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन्स मुख्तलिफ स्टेशन से बीठल ट्रेन्स की अचवन 24 कलाक तीन मुअत्तल रही फैजगंज में वधंदर बदमनी खिलाफ बहरान हाईवे बंद करे धरणो पुलिस खिलाफ नारेबाजी वकीलन व्यापारियों कौम परस्तन कारकुनन शहर रोड से शामियान हणी धरणो हणी छोड़ो ट्रैफिक मुअत्तल थी वही अगवाणन का चवण है फैजगंज जो अमन तबाह थी वो है रोजानो फुर ए चोरी जहा वाक पेश अची रहा है पुलिस बदमनी से जब्तों आनने में मुकम्मल नाकाम थी वही है रवासी घर महफूज हैं मुख्तलिफ इलाक में फुरल गाड़ियों ए सामान वापस कराए अमन बहाल कराए वे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: क्या आप जोड़ों के दर्द पट्ठों के खिंचाव कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम कुदरती

0: जैसे क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਮਾਂ।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अवगी जी प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कर से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है DRSGFM88, जिसको आपने सर्च करना है फेसबुक पे या फिर गूगल पे. आपको वहां पे हमारा जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल वो मिल जाता है, और वहां पे आप लोग जो है देखते हैं पहली पहली पोस्ट होती है आपको नजर आती है, एंड वो होती है जी जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं. तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे, तो कॉल कीजिएगा. और दो सेगमेंट्स में आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाएगा. पहला जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ, जो कि आपसे ठीक ब्रेक के बाद हम कर रहे होंगे एंटरटेन. इसके अलावा जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा वो होगा अगले घंटे में, यानी कि 12 बजे के बाद, दैट इज बोलो तो माने. उसमें एक अदर टंग ट्विस्टर होगा जो कि आपको कह के दिखाना होगा, और वो टंग ट्विस्टर जब आप कह के दिखाएंगे, जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को. ठीक है जी, तो ये होगा. और गाना प्ले कर दिया है जी एक और इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने. बाप ने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: मेहरान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: जिंक एच बूटी ट्री फाइव डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जो शहर बहजो घर सकरंट, आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: Ogish, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं RJ रुखसार आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू. फिलहाल हम आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ. और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉर्नर कहाँ से. हेलो
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से.
1: बेटी वफा अब्दुल वहीद जतो ही बात कर रहा हूँ. बेटी शाबिल से तालुक जिले सखर है. बेटी रुखसार.
0: ओके जबरदस्त. मुझे बताएं गाना कौन सा सुनाएंगे.
1: बिल्कुल सुनाएंगे बाजी. ताहिया हसीन जिंदगी की गुजरी वही याका.
0: हेलो. ओके जी कॉल ड्रॉप हो चुकी है और ये क्यों हुई है आई लिटरली डोंट नो. लेकिन ये है कि हम एक और गाने की तरफ भी चलेंगे और इसी के साथ हम प्ले नहीं प्ले क्या करेंगे मैसेजेस और कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे. ठीक है जी. सो हियर कम्स अली जफर.
2: वेयर्स द मनी. वेयर्स द मनी. Where's the money? Where's the money? Let's dance.
3: Oh yeah.

0: जाए।
1: आओगी जी, हम मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। हमें बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो चुके हैं जी। नजीर खोसो ने हमें कमेंट कर दिया है और नजीर खोसो कहते हैं कि ये सोबरपुर बलोचिस्तान से हमें सुन रहे हैं। अनवर अली हमें सुन रहे हैं, कहते हैं ये शो इज अ बिग ओ ओ।

इसके अलावा अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक, और अब्दुल रजाक वंस अगेन, और इसके अलावा अली अकबर बिरोही हमें सुन रहे हैं, और हाले सुल्तान हमें सुन रही है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हाले सुल्तान। इसके अलावा अली अकबर बिरोही वंस अगेन, हाले सुल्तान कहती है स्वीट आरजे आई एम लिसनिंग योर शो, प्यार है, थैंक यू सो मच हाले सुल्तान। आशी खास के लिए हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि प्रोग्राम बुधी राय आयो अहमद मुगल जो गीत बुधरायो ओके।

अच्छा आज का टंग ट्विस्टर भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ. आज का जो टंग ट्विस्टर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि आपने कह के दिखाना है मुझे जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, ये कहना है जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, बहुत सिंपल सा, अगर समझ के सुनेंगे तो बोलने में आसानी होगी. तो ये है और इसी के साथ हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे एक और सॉन्ग जो कि हम कर भी रहे हैं. और मेरे ख्याल से ये जो हमने कर दिया है ये हमने करना नहीं था लेकिन ये हो गया है. अब ऐसा करेंगे कि हम एक और सॉन्ग की तरफ चलेंगे और वो जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसी के साथ हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों के बाद वापस आएंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Tan ke nishano banaye ho. Kuwait je Ali Al Salem America fazai ede te drone hamlo kare ho. Radar godam. MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कया वया अमेरिकी कार्रवाई जारी रहने ताई आपना हरबुज महफूज न रहंदो बाजार में निकला पारा आपना हरबुज में ब तेल जा जहाज तबाह करण शाम के इलाके अल तनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर से भी हमले की दावा उर्दन हुकूमत चवण है ईरानी हमलन सबब पानी साफ करण वाले प्लांट्स समेत शहरी हंधन के नुकसान पहुंतो है कैनेडा की परदेही वजीर ए ईरानी घर वजीर अज पाकिस्तान जो दौरो कंदा ईरानी घर वजीर इस्कंदर मोमनई ईरानी सदर जो खास पैगाम खणी अज पाकिस्तान पहुंचंदो वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए वफाकी वजीरन से मुलाकात कंदो नायब वजीर आजम इसहाक डार ए अनीता आनंद विच में भी वफदन के सतह से गालू थन्दू धमकी दई सके थी न लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असायती आलमी ताकत तौर उभरियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची है ईरान अगू का मजबूत थी उभरियो है ईरानी रचा थे यूरेनियम विक्रो न तो कर सके स्पेन दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में बुड़ी के मुकाबले में एक शिकस्त दई आलमी चैंपियन बनी वो महादंगल में स्पेन के रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करी टीम के 16 साल का बियों भेरो चैंपियन बनाए छोड़ो मैच जो फैसलाए तो गोल इजाफी वक्त के बे हाफ में थो अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेस शानदार कारकर्दगी मुजाहरो कदे केतरा ही यकीनी गोल्स बचाया वर्ल्ड कप के 8 मैच दौरान का भी टीम स्पेन खिलाफ बरतरी हासिल न कर सकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन की फातह टीम के ट्रॉफी पेश कई अर्जेंटीना के रांदीगरन के चांदी जा तमगा दिना वया ग्राउंड में स्पेन के रांदीगरन जो जशन वर्ल्ड कप में शिकस्त से अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाराई 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स की घटताई रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,73,000 के पॉइंट्स से डिठी वही

ऐं फैज़गंज में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ बहिराण हाईवे बंदि करे धरणो, पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी, वकीलनि, वापारियुनि, क़ौम परस्त कारकुननि ऐं शहरनि रोड ते शामियाना हणी धरणो हयो। ट्रैफिक मुअतल थी वई। मुजाहिरीन जो चवणु आहे त फैज़गंज जो अमन तबाह थी वियो आहे। रोज़ानो फुर ऐं चोरी जा वाकिया पेश अची रहिया आहिनि। पुलिस बदमनीअ ते ज़ाब्तो आणण में मुकमल नाकाम थी वई आहे। रहवासी गैर महफ़ूज़ आहिनि। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां फुरियल गाॾियूं ऐं सामान वापसि कराई अमन बहाल करायो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंद ते आसानी सा जज़ब थी, सूर आए सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
2: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आए चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराने जख्म जे सूर आए चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल किए कजे?
2: मुतासिर थियल हंद ते डीह में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो, आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर का आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सेगमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे जो कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं. गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम आपकी रुखसार, क्या हाल है? आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, उसे विश कर दें. हैप्पी बर्थडे टू यू ततहीर, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक और बहुत सारी बेस्ट विशेज कि आप अपनी आने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा कामयाब होती रहें और आपकी उम्र दराज हो.

03000113488 दैट इज आवर लाइव कॉलिंग नंबर. और कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से कॉल नहीं रिसीव हो पा रही. क्यों ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों. और मैं चाहूंगी कि कॉल रिसीव हो जाए.

इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा गाना प्ले कर दिया जाए और फिर उसके साथ लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जाए. अगर तो ब्रेक पे जाने से पहले कॉल वाला जो इश्यू है वो ख़त्म हो जाता है.

और गाना चेंज करने का कहा था मैंने. सो गाना चेंज करते हैं जी. एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय साहिर अली बग्गा. आजकल साहिर अली बग्गा तानों वाले सॉन्ग्स गाने लगे हैं, तो इनका एक और नया तानों वाला गाना आया है. आए मिलके सुनते हैं और इंजॉय करते हैं.

0: मेहरान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

गाना हमारा पूरा खत्म हो चुका है. मैं ढूंढ रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि बैकग्राउंड में कुछ चल क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं चल रहा कि हम गाना चेंज करेंगे.

लास्ट वीक किसी ने कहा था प्रोग्राम में कि बिलाल सईद का खैर मंगदी प्ले करते हैं और हमने किया नहीं था शायद, सो अभी हम प्ले कर रहे हैं और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे चर्चा होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरी करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: ट्रांसपोर्ट ऐं पी अठ कमांडनि जहाज़नि खे निशानो बणायो कुवैत जे अलियल सालिम अमेरिकी फज़ाई अॾे ते ड्रोन हमिलो कयो वियो रेडार गोदाम ऐं MQ-9 ड्रोन हैंगर्स तबाह कया विया अमेरिकी कार्रवायूं जारी रहण ताईं आबनाह हरमुज़ महफ़ूज़ न रहंदो पासदारनि इनकलाब पारां आबनाह हरमुज़ में ॿ तेल जा जहाज़ तबाह करण ऐं शाम जे इलाइक़े अलतनफ़ में अमेरिका जे कमांड सेंटर ते बि हमिले जी दावा उर्दन हुकूमत जो चवणु आहे त ईरानी हमलनि सबबि पाणी साफ़ करण वारे प्लांट समेत शहरी हंधनि खे नुक़सान पहुतो कैनेडा जी परडेही वज़ीर ऐं ईरानी घरू वज़ीर अॼु पाकिस्तान जो दौरो कंदा ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अॼु पाकिस्तान पहुचंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं वफ़ाक़ी वज़ीरनि सां मुलाक़ातूं कंदो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं अनीता आनंद विच में बि वफ़दनि जे सतह ते ॻाल्हियूं थींदियूं ईरान खे न धमकी ॾेई सघे थी न ई लालच कुझु नुक़सान बावजूदि ईरान असराइती आलमी ताक़त तौरु उभरियो ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराक्ची चयो आहे त ईरान अॻु खां वधीक मज़बूत थी उभरियो आहे ईरानी रचा थियल यूरेनियम विकिरो नथो करे सघिजे स्पेन दिफ़ाई चैंपियन अर्जेंटीना खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में ॿुड़ीअ जे मुक़ाबले में हिक तां शिकस्त ॾेई आलमी चैंपियन बणिजी वियो महादंगल में स्पेन जे रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम खे 16 सालनि खां पोइ ॿियो भेरो आलमी चैंपियन बणाए छॾियो मैच जो फैसलाइतो गोल इज़ाफ़ी वक़्त जे ॿिए हाफ़ में थियो अर्जेंटाइन जे गोलकीपर मार्टिनिस शानदार कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कंदे केतिरा यकीनी गोल्स बचाया वर्ल्ड कप जे 8 मैचिस दौरान का बि टीम स्पेन ख़िलाफ़ बरतरी हासिल न करे सघी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन जी फाथी टीम खे ट्रॉफी पेश कई अर्जेंटीना जे रांदीगरनि खे चांदीअ जा तमगा ॾिना विया ग्राउंड में स्पेन जे रांदीगरनि जो जशन वर्ल्ड कप में शिकस्त ते अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो

पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाढ़ आई। 100 इंडेक्स में 2000 का वधिक पॉइंट्स जी घटताई रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,73,000 जे पॉइंट्स से डिठो वियो। उरूलाल स्टेशन ते मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल न थी सघिया। ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से भी थियल। मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया व्या। मालगाड़ी के ट्रेक तां हटाइण ऐं रेलवे ट्रैफिक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। कराकोरम तेज़गाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियूं ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल। ट्रेन जी अचवञ 24 कलाकनि ताईं मुअत्तल रहंदी। कुंभ वेझो पढ़ियल नारी पुरस्कार तौर गोलियूं लॻण सबब बाजी वई, नौजवान ज़ख़्मी। ॻोठ छतल कलोड़ो में 19 वेरनि जी रज़िया ज़ाल अब्दुल समद कलोड़ो हयाती विञाए वेठी। फायरिंग जे नतीजे में अली मदद कलोड़ो ज़ख़्मी थी पियो। लाश ऐं ज़ख़्मीअ खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस जो चवण आहे त वाके बाबति क़तल तोड़े ख़ुदकुशी जा चुॻल आहिनि। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। सिंध में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। घोटकीअ में 10 वाह जे आबादगारनि सीडा डायरेक्टर जे ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। कैरब नाथन शाह में हारनि ऐं आबादगारनि KTN न्यूज़ जे ऑफिस अॻियां निठण उस में धरणो हुयो। दखण में निमशाखर जे आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सन में शाह आवेस कैनाल जे आबादगारनि एहतजाजी रैली कढी, लाखा लिंक रोड ते धरणो हणी छॾियो। आबादगारनि जो चवण आहे त आपाशी मलदार पाणी मुंड जे आबादगारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबबि लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी पाणी ॾियारियो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सां गलो इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताजगी सां गलो वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by
0: White Ish Beauty Cream Glowing Skin to Raz a product by Biocon International Pakistan

0: GAFM 88 की आवाज,
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

से खुशी तो दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन हिरापुर मातली और जनाब

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन हिरापुर मातली और जनाब साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल जी आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं लिसनर्स फॉर रीजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सुद्रा मुस्कान।

और आप लोग भी हमारे साथ मौजूद होते ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम और बहुत ज्यादा वाली बातें करते हैं, साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल जी आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं लिसनर्स फॉर रिसेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो आरजे एंड डीजे सुद्रा मुस्कान, मामियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करती है भैया सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कलाम के साथ। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम सुनते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा कलाम, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम यहाँ पर आपने एंजॉय किया। इसी के साथ साथ आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, और इसी के साथ साथ ये भी बताएंगे आप लोगों को कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जाएगा। आज के प्रोग्राम के सवाल की जाने पाते हैं, जो कि आप लोगों से मैं ये पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि एक कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है। एक इंसान जो कि कामयाब है अपनी जिंदगी के अंदर, एक इंसान जो कि बिल्कुल नाकाम है अपनी जिंदगी के अंदर, तो मुझे बताएं दोनों इंसानों में क्या फर्क है। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना, या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स यानी ये चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनते हैं, तो जनाब ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। और जी उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही पेज को आपने खोलना है, पेज को देखेंगे तो वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं या फिर जितने भी लोग हमारा शो सुनेंगे या फिर सुनने वाले हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में बिल्कुल जी आप लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, जिनसे आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं उनका इस्तेमाल करके। वैसे लोगों का इस्तेमाल करते ना उनका फायदा उठाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लोगों को जरा साइड पे रखिए और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का फायदा उठाइए, ठीक है, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो बहुत ही शानदार क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है, मैं तो आप लोगों को बताती रहती हूँ, बस आप ही का दिल है जो अभी तक नहीं मान रहा, तो जल्दी कीजिए, जल्दी से आपने जो है ना व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। जैसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे कि कैसे अवेलेबल कराएंगे। और साथ ही साथ अगर आप सवाल को फॉलो करना चाहते हैं, टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताइए कि एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है, ये जरा फर्क आप बताएंगे कि क्या फर्क है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे। ओके जी, यहाँ पर आशिक खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम की थी प्यारी मेजबान साहिबा, उम्मीद है तो खुश हूँ, प्रोग्राम बुधी रहा आयो नाचीज आशिक खास के लिए, मोहम्मद अली जमाली हिजब जान बिरोही सिंधी रेडियो लिसनर क्लब नवाब शाह खां असा सगड़ मौजूद है, तो मोहब्बत हुआ तवाजु प्रोग्राम बुधू पया, अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहे प्यारे भाई, आप भी खुश आमदीद कहते हैं। वहीद वफाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, क्या हाल चाल है, मैं ठीक कहते हैं आपके, माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन है और जिकब आवाज से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। अली मुर्तजा हमारे साथ मौजूद, कहते हैं सलाम गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून। और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, मैं ठीक आप बताएं। अनवर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाय छा हाल है तमाजा, आप ठीक आयो। जी मैं ठीक था, बुधायो कहते हैं माशाल्लाह आपका शो बड़ा जबरदस्त है। ओके जी, आपको भी खुश आमदीद। रिहाना खान हमारे साथ हैं बखर से, रिहाना खान बखर से आपको वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा हैं जी वासु भाई हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, कैसे हैं। आबिद हमारे साथ हैं जी, आबिद भाई हेलो, कहते हैं गुड शो, थैंक यू। और उनखा अलावा आदिल हुसैन तवां गाने जी लिंक शेयर कई आ ठीक हलाईंदासी। उनखा अलावा चाचा खाले जुड़ी जो हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिडो, हाउ आर यू, हो फाइन, यस आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं। बख्तली सियाल हमारे साथ ही हेलो जी। शुएब अहमद मेथलू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम आरजी सिद्रा मुस्कान, गुड शो, सो ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू। कहते हैं जीशान रोकड़ी का गाना लगाएगा, बिल्कुल जी लगाते हैं। अमान मियो हमारे साथ ही, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूं जी, आप बताएं आप कैसे। उनका अलावा आदिल कहते हैं आज कौन सा टॉपिक सोचकर आई है, मैंने बता दिया, आप जल्दी से बताएं इसका जवाब क्या होगा। अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, योर प्रोग्राम आर वेरी गुड एंड हाई क्वालिटी, व्हिच इज व्हाई वी लिसन टू ऑल ऑफ देम विद ग्रेट इंटरेस्ट, The way you answer is also very beautiful. May Almighty Allah grant you further success. Our prayers are always with you. Thank you, Ji. Anwar Bhai, bahut shukriya. Chacha Khalid kehte shukar, alhamdulillah. Signals setable on Facebook page. Haan, kal thoda sa issue ho gaya tha. Lekin aaj, theek hai, wo 5 baje wale program ke saath hi sahi ho gaya tha. Aur Nidhi hamare saath hi. Assalamu alaikum, Maulana Islamabad. Pyari jaan, kaisi hai? Pyari jaan, bahut achhi. Aap bataye aap kaisi. Aur Chacha Khalid kehte hai. Mere ird gird dukhon ki bahar. Allah, ye kya keh rahe hain aap? Chalein ji, itna bhi insaan ko apni zindagi mein dukhi nahi hona chahiye. Motiya Sethani hamare saath maujood hain ji. Walaikum assalam. Mohammad Zaman ke dil se to bismillah and welcome. Dil se my sweet bua ji, aapko bhi welcome karte hain. Bahut shukriya. Aur mukhlis Mohammad Hashim Sumro hamare saath. Mukhlis bhai, aapko khush aamadeed kaha jata hai. Thank you, aap hamare saath. Abdul Razak hamare saath. Song halaye jo bilkul song halaye Nasim Baba gaana halaye jilai baitha ayo. Un ka ilawa agar tuma anya tai YTH beauty product jo istemal na hi kare to tuma jaldi istemal kayo baba. YTH Beauty Products تمہاں کی ملن تھا مناسب قیمتن YTH وارن جی تیہ خاص گال آئے جی کا تمہاں کی بدائیں دی آیا تو YTH Beauty Products میں تمہاں جلے ہر طرح جو پروڈکٹ آویلیبل آئے یعنی یہ بھی نہ آئے تو تمہاں سوچو تو بابا ہانی آسان جی لائے آسان جی طرح جو پروڈکٹ تم ملے ہی کون دو سو تمہاں جلے YTH Beauty Products میں ہر طرح جا پروڈکٹ آویلیبل آئے تمہاں پر سلیکٹ کرنا انہاں کا پوئی اپلائی کرنا ہی تمہاں کی تمہاں جی خوبصورتی ملی ہوئے سو خوبصورت رہو اور خوبصورتیوں حاصل کرو YTH Beauty Products and Day Skin Beauty Products جو استعمال کرنا رہو ٹائم تھی واہے شارٹ کمرشل بریک وٹھوں تھا انہاں کا پوئی واپسی جلدی تمہاری موٹی نہ تمہاں ایتے بیٹھا ہو جو کاری نمن جو ماں صفا او ہی ونی او ہی موٹان تھی سو stay tuned stay connected and keep listening YTH and Day Skin Beauty Show sponsored by YTH Beauty Products and Day Skin Beauty Products لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائے
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है.
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद.
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं.
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार.
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेरापुर माधुरी और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आप लोगों को बताया जाएगा जनाब कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती जो है वो कैसे बढ़ेगी या फिर किस तरह आप लोगों का हुसन जो है वो बरकरार रहेगा, तो ये आप लोगों को जरा सा समझा देते हैं।

ओके बिल्कुल जी। सो यहाँ पर जरा बात की जाएगी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी भी जगह से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट का इंतखाब किया गया है। हर तरह के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, एक्नी से परेशान है, साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, लोशन लगाने वाले लोग हैं, तो जनाब जितने भी अगर आपके स्किन से रिलेटेड मसले हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आप लोगों के लिए भी है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल। तो यहाँ पर आज हम स्टार्टिंग करेंगे जी व्हाइटिश लवली क्रीम से, क्योंकि व्हाइटिश लवली क्रीम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो व्हाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम वो क्रीम होती है भाई जिस क्रीम की आप सब लोगों को जरूरत होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप मेकअप की जगह जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ऐसा सीन बना लें कि आप लोगों को ना गर्मियों में कोई मेकअप नहीं लगा पाता, तो गर्मियों में आपके पास व्हाइटिश लवली क्रीम मौजूद हो जिसे आप बस लगाएं, चुटकियों में रेडी हो जाएं। और व्हाइटिश लवली क्रीम की अगर आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात बताऊं तो व्हाइटिश लवली क्रीम जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है, जिसके अंदर 30 विटामिंस के कैप्सूल्स एटी गए हैं, और उसके अलावा जो है इसके अंदर आप लोगों को विटामिन डी मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, विटामिन B3 मिलेगा। रोजाना सुबह और रात मतलब आप इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुनासिब मकदार अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आप लोगों के चेहरे की स्किन जो है ना वो ग्लो करने लग जाती है, आप लोगों को जो है ना वो निखार मिलना स्टार्ट हो जाता है, और ना सिर्फ आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी बल्कि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, यानी कि जो आप लोगों के चेहरे को सूरज के इन असरात से जो है ना वो निजात क्या मतलब आपको बिल्कुल सेफ ही रखेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन जो है वो गर्मियों में काफी ज्यादा खराब हो जाती है, गर्मियों में लगाने वाले प्रोडक्ट बहुत ही कम है मार्केट, तो आप व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर एक इंसान की जरूरत है और हर एक इंसान को लगानी भी चाहिए, बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ मर्द हज़रात और ख़वातीन हर कोई लगा सकता है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई लगा सकता है, कोई एज लिमिट नहीं। और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल यही होंगे कि आप बस अपना फेस वॉश करके अच्छे से बस आप जो है ना व्हाइटिश लवली क्रीम को अपने चेहरे पर थोड़ा सा मिकदार लेकर लगा लेंगे। उसके बाद आपने कहीं जाना है, कोई जॉब कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस व्हाइटिश लवली क्रीम लगाओ और चुटकियों में रेडी हो जाओ। उसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा है, एक्नी ने आपको परेशान कर रखा है, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की अगर बात की जाए तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी का खात्मा है बल्कि एक्नी से रिलेटेड बहुत सारे जो मसले होते हैं ना उनका भी जड़ से खात्मा कर देगा। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का जो ट्यूब है ना अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर सब जड़ी बूटियां ऐड की गई है। आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ब्लैक पॉट्स हो, एक्स्ट्रा ऑयल हो, एक्नी किसी भी तरह का हो, हर तरह से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को जो है वो क्लियर बनाता है, बेदाग बनाता है, खूबसूरत बना देता है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है। तो अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं तो चाहती हूँ भाई लाजमी आप लगाकर देखिएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल आप गर्मियों में कर सकते हैं, सर्दियों में कर सकते हैं, और लड़के लड़कियां सभी लगाएगी, टीनेजर्स खास करके, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी निकल आते हैं। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के तरीकेकार भी बहुत ज्यादा आसान है कि आप इसे सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगा सकते हैं। अगर ऐसा है कि एक्नी बहुत ज्यादा ही आके फेस पर एक्नी का मसला बहुत ज्यादा है तो आप तीन मरतबा लगा लीजिए, कोई मसले की बात ही नहीं है। ओके जी, लगाने के तरीकेकार ये होंगे कि जहाँ पर आपके चेहरे पर कोई निशान हो, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है या फिर एक्नी हो तो वहाँ वहाँ पर आप लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा। फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, अच्छे से हाथों को क्लीन कीजिए, उसके बाद आप अपने चेहरे पर जो है ना वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को अप्लाई कर दीजिए। वैसे भी कहते हैं कि जिनके चेहरे पर एक्नीज होती है ना वो बार बार आपने ना ऐसा करना है कि अपने फेस पर हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से जो है ना अपने चेहरे को बार बार टच करते रहते हैं आपको एक्नी पहले से बहुत ज्यादा होते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके एक्नी जो ना वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं फेस पर। तो इन चीजों से थोड़ा गुरेज किया करें, हाथ फेस पर बार बार मत लगाया करें, और उसके अलावा जो है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी लगाया करें।
और अगर साथ में आप कोई भी अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है और आपके पास व्हाइट एश का फेस वॉश भी मौजूद है जो कि भाई विटामिन सी से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस वॉश है जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई भाई सिद्रा सही कह रही थी। और उसके अलावा व्हाइट एश लवली क्रीम है और जी ये तो आप जानते हैं। और साथ साथ अगर हम यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की बात करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो अगर आप कोई नाइट क्रीम अच्छी वाली लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाइए जो कि आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत बना देगी, आपके चेहरे के मसाइल को दूर कर देगी और आपको हमेशा जो है ना खूबसूरत बना देगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं कि हमारे गोठ में, हमारे सिटी में, हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों तो उसके लिए आप नंबर जो आपको बताऊंगी जरा वो डायल कीजिएगा। पहले भाई आप लोगों को एक नंबर बताती थी लेकिन अब हमारे पास जो ना नंबर्स का जरा इजाफा हो चुका है, तो आप लोग अगर नंबर जो है वो डायल करना चाहते हैं तो अगर आप सखर में जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सखर में नंबर डायल करेंगे और सखर वाली ऑडियंस जो है वो हमारे साथ मौजूद है तो आप सखर वालों के लिए नंबर होगा 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907। उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं यानी कि जितने भी लोग हैं बस सारे लोग आपको जो नंबर भी सूट करे, जो नंबर भी आप नोट कर लें वो नंबर आप डायल कर सकते हैं। तो बाकी जो नंबर हैं वो है 03-32-73-84-309 बिल्कुल जी 03-27-38-43-09 ये नंबर्स आप डायल कीजिएगा क्योंकि महर इरफान सियाल साहब जो हैं वो उमरा पर गए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई लिसनर्स को आप बोल दें कि वो जो है ना मेरे नंबर पर नहीं ये जो दूसरी नंबर आपको बताए जा रहे हैं इसके ऊपर रابطہ करें और इस नंबर्स के ऊपर रابطہ करके उनसे मालूमात ले लें, अपनी करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं और महर इरफान सियाल आपका नंबर आप कुछ दिन तक डायल मत कीजिएगा, ठीक है, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा और जो नंबर आपको बता रही हूँ वही नंबर आप डायल कीजिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जो नंबर अभी आपको बताएं वो जरा डायल कीजिएगा और साथ साथ आपको पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है, ये दोनों इंसान थोड़े मुख्तलिफ होते हैं लेकिन आप बताएं इनमें फर्क क्या है और क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से या तो एक इंसान कामयाब हो जाता है या तो एक इंसान नाकाम हो जाता है।

ズヨガです。खूबसूरत सा गाना सुन रहे हो, साथ साथ प्रोग्राम है जी व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन। नाम जी कीजिए ना, कैसी कंजूसियां हैं ये। एक तो प्रोडक्ट जब पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं करे, अरे भैया ये मोहब्बत ही चाहिए।

टॉपिक जो कोशिश करेगा वो कामयाब होगा और जो कोशिश नहीं करेगा वो नाकाम होगा. ओके ओके जी, कुर्बान अली कमरानी हमारे साथ है दादू सी. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. चाचा खालिद कहते कामयाब इंसान तब बनता है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे और नाकाम वो जो बस दूसरों पर क्रिटिसाइज करते रहे. खुद डोंट स्ट्रगल इन लाइफ, योर टॉपिक आंसर. ओके, देखिए मैंने तो बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं बन पाते है ना. उदास लड़की कहती है इस टॉपिक का जवाब बड़े लोग देंगे, हम बच्चे चुप करते. अरे भाई और कितनी बच्ची बनोगी तुम. आने वाली थी भैया ले चले. आदिल कहते हैं कामयाब आई नाकाम इंसान में फर्क नतीजे जो न सोचे अमल जो आ दुनिया की नजर में ऐसा समझूं था. ओगरी कहते हैं कामयाब इंसान ही मुश्किल आहे पर रस्तो निकरंदो, नाकाम इंसान मुश्किल आहे ते करे माँ न करे सघंद. कामयाब माण्हू मसलन के सबक समझे थो, नाकाम माण्हू उन खे रुकावट समझे थो. ऐं ॿियो अमल जो फर्क़ आहे. जी बहुत है, आपने कमेंट कर दिया है और वो आपने बिल्कुल सही है. और लिखते हैं आदिल वो जैसे गुड बॉय बोलते फराज खराब इंसान भी अच्छा बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है. बिल्कुल जी, इस चीज के ऊपर मैं भी बिलीव करती हूँ. देखें बन गए हैं ना. अच्छा मुखलिस हाशिम सुमरो भाई हमारे साथ हैं, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू. और हैं जी हमारे साथ अमान मीनू कहते हैं इट्स सो गुड, थैंक यू. अली मुर्तजा कहते हैं ओके जी ओके. मामा समान आपने टॉपिक के ऊपर बात कर दी है, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच. दर्द दिल कहती है कैसी है चंदा, मैं ठीक हूँ आप बताएं प्यारी आप कैसी है. और दर्द दिल कहती है कभी कभी इंसान का मजबूत होना ये नहीं कि उसे तकलीफ नहीं होती, बल्कि ये होता है कि वो हर तकलीफ के बाद अपने दिल को अल्लाह के सुपर्द करना सीख लेता है. असल सुकून लोगों के बदल जाने में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने में होता है. बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात. मेरी की लग दी क्या ही ट्रेक था, बहुत खूबसूरत. एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, जरा हम सुनेंगे. मुमताज मलिक का गाना होने वाला है, चाचा तो के समझाया दस्त सही. अगली गाना सुनेंगे और आपको बताएंगे माँ भी छा छा तहां के समझाया बाबा ताजे खूबसूरती किथे किथे लेके लाए तवाज लकीडा भला भला मार्केट में प्रोडक्ट अच्छी वया छा छा समझाया समझो ही न था.

अच्छा मन तव्हां खे कंहिं शइ जी ख़बर ई कोन्हे का ईअं न कयो बाबा ईअं न कयो हाणे वॾा थी विया आहियो ऐं अञा ताईं अगरि तव्हां वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु नाहे कयो त बाबा जल्दी इस्तेमालु कयो तव्हांजे एरिया में मिलनि था कोन प्रोडक्ट तव्हां इहो बि लाज़मी पुछा कजो जे तव्हांखे आसानी थी वञे तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो उतां इज़ीली वठी अचो समुझो था

ऐसा समझी यासी बाबा। ही जेका गाल आहे न तुंहिंजे साम्हूं तुंहिंजा अथई मुंहिंजे साम्हूं मुंहिंजा अथई, इहा ॻाल्हि थोरो टाइम थियो आहे वाकई असां समुझी विया आहियूं। अहिड़ा माण्हू खोड़ असांजे आसपास आहिनि, पासो करणु घुरिजे ईअं न।

ओके जी, अरीबा हमारे साथ। यदि आप उस दिन कह रही थी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। ओके जी, और सजाद अली जमाली हमारे साथ नवाबशाह से कहते हैं सॉन्ग प्ले करें ममताज मौलाई, ममताज मौलाई हले तो बाबा बुद्धू। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर है, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। और अब्दुल्ला महर कहते हैं बाजी शो नाइस है, वाई चेस ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गानो थोड़ो नंढड़ो आहे हिन जेके थोरो थोरो पोइ ते करिणो पियो। टाइम थियो बाबा न्यूज़ ब्रेक जो, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, ठीकु आहे। वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾिठूं था, तव्हां खाली न वञो हिते वेठा हुजो। मां सफ़ा ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हणंदा रहो जे तव्हां बि सोणा थियो, समझो नी।

अमेरिका जा ईरान ते नई रात हमला अमेरिकी फौज के सेंटकॉम जो चवण है ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स फिजाई दिफाई निजाम मिजाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च साइट्स के निशान बनाया वो ईरानी मीडिया मुजिब तबरीज चाबहार शेरक हरमुजगान बुशहर और कोनार्क में हमला किया वह अमेरिकी सदर ट्रंप जो चवण है ईरान से हमला अमेरिकी फौजन के मारण जो रद्दअमल है फौजन के बाजी वन ढो दुख थो है बाजी वेल अमेरिकी फौजी इन मकसद के लिए वेही रहा हुआ तो ईरान एटमी हथियार न रखी सके। अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरान जा खिते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डन से हमला पासदार इनकलाब चवे तो ऑपरेशन नसर टू के एक्वी मरहल में उर्दन के अकबा एयरपोर्ट से अमेरिकी सी 17 ट्रांसपोर्ट और पी 8 कमांडन जहाजन के निशानों बनाया कुवैत के अली सालम अमेरिकी फजाई अड्डे से ड्रोन हमलो किया रेडार गोदाम MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह किया वह अमेरिकी कार्रवाई जारी रहने तीन आबना हरबुज महफूज न रह पासदारन इनकलाब पर आबना हरबुज में ब तेल जहा जहाज तबाह कर शाम के इलाके अलतनफ में अमेरिका के कमांड सेंटर से हमले की दावा उर्दन हुकूमत का चवण है तो ईरानी हमलन सबब पानी साफ करने वाले प्लांट्स समेत शहरी हंधन के नुकसान पहुंचो। ईरान के न धमकी दई सके थी नई लालच कुछ नुकसान बावजूद ईरान असराए थी आलमी ताकत तौर उभरियो ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराकची चवा है ईरान अगु का मजबूत थी उभरियो है ईरानी रचा थे यूरेनियम विक्रो नथो करे सके। सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा धरना लाड़कानों में घड़ियासिन के आबादगारों इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर के ऑफिस बाहर धरनो रोहड़ी में काजीबाह के पुछड़ी के आबादगार एहतजाजी मुजाहरों को घोट आबादगार सीडा डायरेक्टर के ऑफिस अगर एहतजाजी मुजाहरों को कैरप नाथन शाह में हारन आबादगार केटीएन न्यूज के ऑफिस अगर रिटर्न उस में धरनो हो दखण में निमशाख के आबादगार पानी की खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों को सन में शाह आवेस कैनाल के आबादगार एहतजाजी रैली कढ़ी लाखा लिंक रोड से धरनो हो आबादगारन का चवण है आपाशी अमलदार पानी मुंड के आबादगार के विक्रो कर रहा है जमीन के पानी न मिलने सबब लखे रुपये जो नुकसान थी रो है नोटिस वी पानी डारो वे पुडेरोला स्टेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रेक बहाल न थी सकिया ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से भी थियल मुसाफिर के रहल भाड़ा वापस किया वह मालगाड़ी के ट्रेक से हटाने और रेलवे ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों जारी कराकरम तेजगांव और पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत बी ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन ट्रेन की अचवन 24 कलाक मुअत्तल रही कराची के इलाके

0: दादू में म्यूजिक टीचर से उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर नमूने के खिलाफ गाय वजह एहतजाज के म्यूजिक टीचर दोल शरनाइन से कलाम गाय अनोखो एहतजाज नोट कराया एहतजाज में तुझे कूड़न कूड़न वायदन से एतबार बेन कलाम की गूंज उम्मीदवार सजा सुमरो जावेद अब्बासी बेन जो चवण है टे सौ उणवी म्यूजिक टीचर्स का खानदान टिन साल बुख बदहाली जो शिकार है नोटिस वी ऑर्डर्स दिना वन
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: यार ही गोडन जो सूर ए चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे हलन वेहण हर कम दुख्यो लगे थो
3: तो पैसा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थई
2: न यार छा वाकई फायदो करे थी
3: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जजब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे
3: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में ट्रेखा चार भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा
2: वाह पोए अडी वठींदस
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजी मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
4: सुनी

स्किन को रिपेयर कर सके। तो अगर आप इस तरह के किसी ट्रैप में फंस चुके हैं, इस तरह का कोई सीन आपके साथ भी हो रहा है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको माइक्रोबीड्स फॉर्मुलेशन मिल रहा है और विटामिन ई बीड्स आपको मिल रहे हैं, जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, हाइड्रेट रखेंगे। और उसके साथ साथ जो है ना, और इसके अंदर यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको अल्फा अर्बुटीन मिल रहा है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, और इसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल कर चुके हैं उनसे बहुत ही ये मुख्तलिफ सा प्रोडक्ट है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की खास बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे और 2 रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन नरम हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, और आपकी स्किन के अंदर जो है ना अंदर तक जाकर ये डीप आपकी स्किन को क्लीन करेगा और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगी। आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, डार्क सर्कल्स हो, एक्नी मार्क्स हो, एक्नी हो, हर तरह के निशाना से आपको पाक रखती है जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार ही इस तरह किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम चलिए आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आप लोगों को बताते चलें कि ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो इस तरह का सीरम होता है जो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोगों की स्किन ऐसी हो जाती है कि लगता है कि भाई अगले इंसान की जो स्किन है वो कहीं मुरझा सी गई है या ऐसी मरी हुई सी स्किन लग रही होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्किन खिली खिली नजर आए, आपकी स्किन पर ग्लो हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल जी डी स्किन फेस वॉश। और डी स्किन फेस वॉश आपकी स्किन को बिल्कुल प्यारा बना देगा। तो डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बिल्कुल जी एक नया सा रंग दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर्स हैं जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो बिल्कुल जी नंबर आप नोट कीजिएगा, नंबर है 03 12 50 25 907 03 12 50 25 907 और दूसरा नंबर है 03 27 38 43 09 03 27 38 43 09। ये नंबर जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। इनसे कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, और मजीद अगर आप कोई भी इनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आप इनको बता सकते हैं कि कहाँ पर जाएं, कहाँ पर अवेलेबल हैं, कितनी प्राइसेस हैं, ब्ला ब्ला जो भी पूछना चाहते हैं। तो बिल्कुल जी इस नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, पता ही नहीं चला। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो टॉपिक दिया है तो वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान में क्या फर्क होता है।

क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना सुन रहे हैं। यहाँ पर एम अंसारी लिखते हैं कि हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, हमारे लफ्जों से सीते हैं कुछ लोग अपने दिल के जख्म, और कुछ को हम चुभते हैं सुई की नोक की तरह। आई ली मुझे कहते हैं कि यासिर अली शान अलीजा अलिशबा हिरा भी यू को सलाम और हेलो कह रही है। हेलो और जी और भी लोग हैं जिनमें आरफा हैं, रिमशा हैं, उरूसा, फरहान, शकील का भी सलाम एंड हेलो, वालेकुम अस्सलाम एंड हेलो।

0: 안지. 안지. ओके जी हिदायत साहब आपने जो गाना बोला है ना वो थोड़ा सा इंडियन गाना है तो इसलिए नहीं लगा सकते. और कहते वैसे आज एक
1: छोटी मोटी गाल
0: हाँ लगवा के ये रहा है कि वो भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने गए हैं. तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए. दर्द दिल आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू स्वीटी. सजाद हुसैन सुमरो हमारे साथ है. नदली कहती है कि अगर वो अच्छा कहती है कि अरे यार वो सुना है ना गर्ल्स जितनी भी बड़ी हो जाएं बट वो हमेशा छोटी ही लगती हैं और हमसे छोटी ही रहेंगी. अच्छा हमेशा छोटी ही रहेंगी ऐसा क्यों भला, वो कभी ना कभी तो औरत बनेगी ना.

बिल्कुल जी, और आप भी परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती जनाब बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए ऐसा हुसैन जो हमेशा आपके साथ रहे, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में लीजिएगा डी स्किन फेस वॉश ताकि आपको मिले मुकम्मल हुस्न। ओके, रिहान अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आबिद बिरोही हमें सुन रहे हैं, हेलो आबिद भाई। अच्छा, शरीफ अहमद लगारी हमारे साथ हैं, हाय। अनवर भाई आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहम्मद समान कहते हैं वीआईपी शो एंड उससे भी ब्यूटीफुल है, मेरी बात करें। थैंक यू। गाना सुनिएगा।

बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाकर देखा जी, बताइए जरा हमें भी। और यहाँ पर शोनी कहती है आप ही जान में वापस आ गई, आप ही कल वापस आई हो हम सब। चलिए जी, क्या बात है, आपकी छुट्टियाँ अभी तक चल रही है, एंजॉय करें भाई। और अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर, मेरे नजदीक सक्सेस का मतलब काबिलियत है, इंसान काबिल है तो सक्सेस उसके पीछे होती है, अगर काबिल नहीं तो वो सारी उम्र सक्सेस के पीछे भागते फिरते हैं। कह सकते हैं।

आप भादे आप हमारे साथ साथ मौजूद रहेंगे जी पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ है इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में, यहाँ पर आपको खूबसूरती की बातें बताई जाती है और अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए जाते हैं। तो साथ दीजिए और साथ रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक। यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: DAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz. Shah Latif ka Sufi Thikana.
1: Fatih Mehran, Sindh ki ek aur pehchan.
0: DAFM 88 Network,
1: Sindh ki Awaaz.
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ मिनीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर नीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
5: सिंध के माथे का झूमर
6: DFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: बाबू भाई
2: तवां भी पंहिंजो ख्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़ जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल
1: बाबू भाई

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

सुनो जाना महशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, महशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, तुमसे उम्मीदें मुलाकात लिए बैठे हैं। महशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, तुमसे उम्मीदें मुलाकात लिए बैठे हैं। तुम नहीं तो अजब आलमे तारीखी है, सुबह होती ही नहीं हम रात लिए बैठे हैं। ऐसी क्या बात है दम भर के लिए आ जाओ ना तुम, ऐसी भी क्या बात है दम भर के लिए आ जाओ ना तुम। कब से हम छोटी सी एक बात लिए बैठे हैं, आप बेरंगी मौसम से ना घबराइए के हम, आप बेरंगी मौसम से ना घबराइए के हम, आपके वास्ते बरसात लिए बैठे हैं, आपके वास्ते बरसात लिए बैठे हैं। मशरे ख्वाबो ख्यालात लिए बैठे हैं, तुमसे उम्मीद मुलाकात लिए बैठे हैं। अरे देखो ना, तुमसे उम्मीद मुलाकात

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आपने एंजॉय किया, और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है मेरी जान व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपकी खूबसूरती का राज जो है ना अब इन्हीं के पास है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई अच्छा वाला सूटेबल जो है ना वो प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आता, आपने बहुत ट्राई की लेकिन आपकी स्किन के मुताबिक कोई प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलते, तो आप एक मरतबा ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, इसके अंदर केमिकल्स का भी कोई डर नहीं कि भाई अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स के मुताबिक जो है ना इसको तैयार किया गया है, और इसके अंदर विटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन की हिफाजत करती है, स्किन को हाइड्रेट रखती है, स्किन को खूबसूरत बनाती है, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। तो लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे और अपने चेहरे को चमकता हुआ बना देंगे। ऐसे कि साथ साथ आपको

को जरा नोट कीजिएगा क्योंकि नंबर जरा चेंज हो चुके हैं, तो नंबर को नोट कीजिए ताकि आप अब जो ही अपने करीबी टर्नर स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके. और आपका ये जी

भाईजान आपका मैसेज मुझे जरा समझ नहीं आया, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। 78 से राजा स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है। नंबर्स को जरा नोट कीजिएगा क्योंकि नंबर जरा चेंज हो चुके हैं, तो नंबर्स को नोट कीजिए ताकि आप जो है अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके और

भाईजान आपका मैसेज मुझे जरा समझ नहीं आया, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। 78 मोरी से राजा हमीरचंद हैं, किशोर कुमार हैं, हीरा भाई हैं और हैं जी अकबर कुंभर। अच्छा गानो तो हाँ चाहे हुआ है, गानो हलाइंदा सी बिल्कुल भाज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पया और शोनी की थी आप ही जान में चले ठीक है ओके। अच्छा फेसबुक पर प्रोग्राम सही चल रहा है, बताएं जरा मुझे।

बिल्कुल जी, रमजान अली भाई हमें सुन रहे हैं। रमजान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अमीन मियू हमारे साथ हैं, वेलकम जी। अनवर भाई आपने पोएट्री लिखी है, खुद को इतना कीमती बनाओ कि खरीदने वाले को डर लगे। बिल्कुल जी, सही बात है। अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान बरोही सकरण से। वालेकुम अस्सलाम भाईजान को खुश आमदीद कहा जाता है। साजन कुमार हमारे साथ हैं फ्रामीपुर खान। ओके जी बिल्कुल, दाऊं करण मां कुछ कोन मिलंदई, बस तमा पांजी स्किन ते ख्याल करो, स्किन जो ध्यान रखो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो तमा नंबर से राबतो करो और इनका मालूमात वठो। भाईजान असा गाड़ी वन्यू असा किथा वठू हो तांगे बुधाई छडींदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेकर तमा इस्तेमाल कंदा तो तमा जी खूबसूरती तमा के मिली वेंदी, आई तमा जी स्किन अगर सेंसिटिव आए तो तमा के तो लाजमी लगान घुर्जे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सफा सोने तरीके से तैयार कई वई है, मेडिकेटेड फार्मूलो है, लाजमी ट्राई करे दिसो मजो अच्छी वेंदव। अच्छा नदड़ी कहती है कि मेरे साथ मेरा बंदर भाई भी आपका शो सुन रहा है, सुकून से शो भी नहीं सुन दे रहा। चलिए जी अच्छा हसनैन मल्हा आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्ला कहते हैं टॉपिक कैंसर कामयाब, इंसान के पीछे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का हाथ होता है और नाकाम इंसान के पीछे दूसरी क्रीमों का हाथ होता है। सही बात है वैसे। मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खुश रहे। और शाहिद अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये हमारे साथ है रुखसार मरीन मीरपुर खास से, कहती है अस्सलाम वालेकुम, आप ही सदरा शो सुन रहे हैं आपका, आज मेरी छोटी सिस्टर ततहीर की बर्थडे है, विश कीजिएगा। ओके जी स्वीटी को हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, सलामत रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। और आप हमारा शो सुन रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और वफा शहजादा मक्सी हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद है जी, खुश रहें, थैंक यू, आप भी खुश रहें। अली अकबर ब्रोही भाई आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और चनेसर थेबू हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। दर्दे दिल क्या कहती हैं, कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियां असल फर्क और वसाइल का नहीं होता, रवैये का होता है। ये फर्क बजाहिर बहुत छोटा नजर आता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही छोटा सा फर्क किसी को बहुत आगे ले जाता है और किसी को वहीं रोक देता है। चंदा मुझे तो यही समझ रहा है। चले जी बहुत बेहतरीन, नाइस। ओके जी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने

अब्दुल गफार पर सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। चाचा खाली चुनी जो आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और अनवर भाई की आपकी आवाज तो बड़ी प्यारी, बहुत शुक्रिया जी, अब आपको याद आया। दर्द दिल कहती हाय चंदा, इतनी अच्छी पोइट्री सुना दी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू नजीबुल्ला बिरोही, कहते हैं कैसी आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? डॉक्टर अब्दुल गफार हमें सुन रहे, जी वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको। और न खा अलावा हमारे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, वाकई पता नहीं ये कब ठीक होगा। और मीर शौकत अली में सुन रहे थे, माशाल्लाह नाइस ये शो, थैंक यू मीर शौकत अली, कहते हैं जी ओके चल रहा है अब बेहतरीन, थैंक यू। और आप हमें सुन रहे हैं कहां से? लकी वन मॉल कराची, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मुनासिब सी कीमत में आपको मिल रहे हैं, तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या ही जाता है।

आने यकीन जाने जब आप ट्राई करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे. मेरे अंदर की हिंदी जो है ना वो जोर से निकल आती है. रमजान शेर भाई हैं कराची से, आप हमें सुन रहे हैं. ओके क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. नजीबुल्ला भाई हमारे साथ हैं, थैंक यू. मोहम्मद समान कहते हैं टॉपिक का दूसरा आंसर है

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन. और उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल गफार भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया. प्यार अली जरवार बाजी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, कहते माशाल्लाह योर शो. थैंक यू सो मच प्यार अली भाई, आपको वेलकम कहा जाता है.
0: मायरा हमारा शो सुन रही है, मायरा आपका बहुत शुक्रिया.

जी सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वाइटेशन टेस्ट एंड ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था। बिल्कुल जी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टेस्ट एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे हमें जरूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से लिसनर्स हैं वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और रमजान भाई यदि हम आपको अच्छा कसीदा जो होता है ना मेरे भाई मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाती हूँ प्रोग्राम के बीच में नहीं लगा दी तो आप कसीदे की फरमाइश जो कर चुके हैं तो मैं आपका कसीदा कल आकर लगा लूंगी। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। अली शेर मरी भाई हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। अली मुर्तजा कहते हैं कि मैं एक

0: से थी,
1: यानी कि फुल एंजॉयमेंट चल रही है. करें जी, एंजॉय करिए. और यहाँ पर हमारे जाने का वक्त आ चुका है. और निदली कहती है कि अरे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. सो चलें जी, मिलते हैं हम आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में. 5 बजे आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा. ओके जी, सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. और वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए. और अपनी जिंदगी में खुश रहिए. और जरा कोशिश करें कि आपसे जो लोग हैं ना, वो ऐसा हो कि बस थोड़े से राजी रहे. क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे लोगों को राजी करने की, तो तकरीबन वो कोशिश जो होगी ना, वो कोशिश और एफर्ट जो है ना, वो देखे जाते हैं. ये चीज नहीं कि कितने लोग राजी होते हैं कितने नहीं, बस आप कोशिश करते रहें. और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत. बड़ी मिलूं था 5 बजे. ढेर सारा ख्याल रखिएगा. कितने का गलती थी मुझे तो माजरत कंखे ओड़ो लव सुठो न लगो जो जेको मु गाला हो जे तवा के सुठो न लगो उन जे लाई माजरत कयो था. सो मोकरानी ना ही बाबू से सलामत सा सलाम. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. लव यू ऑल एंड टेक केयर.

ईरानी घरोबजी इस्कंदर मोमनी जो इस्लामाबाद पहुंची रहो है ज़रिए मुजिब इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर जो खास पैगाम खड़ी अची रहो है मोहसिन नकवी की दावत से बिन ढीन इस्लामाबाद इंदर ईरानी घरोबजी वजीर आदम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर घरोबजी ने बेन से मुलाकातू कंदू।

बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सिस CTD ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन टिनि ॾींहनि खां जारी ऑपरेशन में हेल ताईं 37 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 11 ज़ख़्मी थी पिया। 3 लाश बि मिलिया। DPO बनू मूजिबि ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह करे हथियार हथ कया विया। मंबाती बारकज़ई वारो इलाइक़ो 60% क्लियर थी वियो आहे। शहरनि जे जान ऐं माल जो तहफ़ुज़ हुकूमत जी पहिरीं ज़िमेवारी आहे। अमन अमान जी सूरतहाल में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी। वरी वज़ीर सैयद बरादरी शाह जो अमन अमान बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमून, घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। सैयद बरादरी शाह चयो त ॾोहनि में मुलविज़ अंसरनि खे का बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दनि, मंशियात फरोशनि ऐं भतेखोरनि ख़िलाफ़ कारवायूं तेज़ कयूं वञनि।

सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादकार सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। लाड़काणो में घड़ियासीन जे आबादकारनि जो इरीगेशन कॉम्प्लेक्स में इंजीनियर जी ऑफिस ॿाहिरां धरणो। रोहड़ी में काज़ीवाह जे पुछड़ीअ जे आबादकारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। घोटकीअ में ॾहरवाह जे आबादकारनि सीडा डायरेक्टर जी ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। ख़ैरपुर नासन शाह में हारियुनि आबादकारनि केटीएन न्यूज़ जी ऑफिस अॻियां निटण उस में धरणो हयो। ॾखण में निमशाख जे आबादकारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। सन में शाह आवेज़ कैनाल जे आबादकारनि एहतजाजी रैली कढी लाखा लिंक रोड ते धरणो हणी छॾियो। आबादकारनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलदार पाणी मुंड जे आबादकारनि खे विकिरो करे रहिया आहिनि। ज़मीननि खे पाणी न मिलण सबबि लखे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी पाणी ॾियारियो वञे। सखर में सिंध बलोचिस्तान हारी आबादगार इतिहाद जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरणो टे ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो चवणु आहे त टिनि ॾींहनि खां सख़्त गर्मीअ में धरणो हणी वेठल आहियूं, पर जाइज़ मुतालबा मंज़ूर न आहिनि कया विया। पाणी ॾियारण जे लाइ आबपाशी खाते जे चीफ इंजीनियर खे 24 कलाकनि जी मोहलत ॾिनी आहे। अॼु शाम ताईं मुतालबा तस्लीम न थिया त मुशावरत बाद बबलो बाईपास ते धरणो हणंदासीं। असां रोड ब्लॉक करे आवाम खे तकलीफ़ ॾियणु नथा चाहियूं, पर पाणीअ ख़ातिर एहतजाज कंदासीं।

फैज़गंज ऐं कंबर में शहरनि जा बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। कंबर में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि प्रेस क्लब अॻियां टायर साड़े धरणो हुयो। फैज़गंज में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शामियाना हणी धरणो हयो वियो। पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी अॻवाननि जो चवणु आहे त फैज़गंज जो अमन तबाह थी वियो आहे, पुलिस ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई नथी करे। उडेरो लाल स्टेशन भरिसां मालगाड़ी सां हादसे सबबि मुअत्तल थियल। अप ऐं डाउन ट्रेक ॿाहिरि न थी सघिया। ट्रेन्स मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल मुसाफ़िरनि खे रहियल भाड़ा वापसि कया विया। मालगाड़ी तां हटाइण ऐं रेलवे ट्रैफ़िक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। कराकुरम, तेज़गाम ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियूं ट्रेन्स मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बीठल। ट्रेन्स जी अचवञु 24 कलाकनि ताईं मुअत्तल रहंदी। कराची में 34 साल अॻु सरकारी बस जे टकर में माज़ूर थियल शख़्स खे 1 करोड़ ॾंढ भरे ॾियण जो हुकुम। सीनियर सिविल जज ॾखण जी अदालत 34 साल अॻु रोड हादसे में माज़ूर बणियल शख़्स जे हर्जाइण वारी दावा ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। किशन लाल कोरंगीअ में सरकारी बस जे टकर सबबि माज़ूर थी वियो हो। अदालत चयो त रिकॉर्ड मां साबित थिए थो त हादसो ड्राइवर जी गफ़लत सबबि पेश आयो। सरकारी बस सां हादसे जी ज़िमेवारी सिंध हुकूमत ते बि लागू थिए थी। अदालत जो सिंध हुकूमत ते लाॻापियल धुरियुनि खे 3 महीननि अंदरि फरियादीअ खे 1 करोड़ रुपया हर्जाणो भरे

नाज़माबाद मां ॿ ॾींहं अॻु अॻवा कयल अढाई वॾनि जो ॿारो बाज़ाब पुलिस जो चवण आहे त ॿार अज़ान खे ठटो वेझो कार्रवाई करे बाज़ाब करायो वियो। आई जी सिंध जावेद आलम ओढो जी पुलिस टीम खे शाबाशी। आई जी सिंध चयो त वाकई जी शफ़ाफ़ जांच करे अॻवा में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।

0: दादू में म्यूजिक टीचर्स जो ज्वाइनिंग ऑर्डर नंबर खिलाफ गाए वजाए एहतजाज म्यूजिक टीचर्स दोस्त शनाइन ते पंहिंजे तुंहिंजे कूड़नि कूड़नि वाइदनि ते एतबार कयुमि ऐं ॿिया कलाम गाए अनोखो एहतजाज रिकॉर्ड करायो। मुजाहिरीन जो चवणो त 319 म्यूजिक टीचर्स जा ख़ानदान 3 सालनि खां बुख बदहाली जो शिकार आहिनि, नोटिस वठी ज्वाइनिंग ऑर्डर्स ॾिना वञनि। ऐं स्पेन दिफ़ाई चैंपियन अर्जेंटीना खे फुटबॉल वर्ल्ड कप जे फाइनल में ॿुड़ीअ जे भेट में 1 गोल तां शिकस्त ॾेई आलमी चैंपियन बणिजी वियो। महादंगल में स्पेन जे रांदीगर फेरन टोरेस शानदार गोल करे टीम खे 16 सालनि बाद ॿियों भेरो आलमी चैंपियन बणाए छॾियो। मैच जो फैसलाइतो गोल इज़ाफ़ी वक़्त जे ॿिए हाफ में थियो। अर्जेंटाइन जे गोलकीपर मार्टिन्स शानदार कारदगीअ जो गुज़ारो कंदे केतिरा ई यकीनी गोल्स बचाया। वर्ल्ड कप जी 8 मैचिस दौरान का बि टीम स्पेन ख़िलाफ़ बरतरी हासिल न करे सघी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन जी फाते टीम खे ट्रॉफी पेश कई। ग्राउंड में स्पेन जे रांदीगरनि जो जशन, अर्जेंटीना जो कप्तान लियोनल मेसी लुड़क लाड़े वेठो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
2: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: चकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: It's 4 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment।
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।

ईरानी घरूमजी इस्कंदर मोमनी अॼु इस्लामाबाद पहुची रहियो आहे। ज़रियन मूजिबि इस्कंदर मोमनी ईरानी सदर जो ख़ासि पैगाम खणी अची रहियो आहे। मोहसिन नकवी जी दावत ते ॿिनि ॾींहनि जे लाइ इस्लामाबाद ईंदड़ ईरानी घरू वज़ीर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, घरू वज़ीर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।

सिंधा कोर्ट सखर बेंच डहर के अगवा जाने नारी फहमीदा पिताफी के 10 अक्टूबर तक बाजियाब कराए पेश करने जो हुक्म दे छोड़ो। सरकारी वकील की माफिया का आईजी सिंध ए घरू सेक्रेटरी जहां जमानत जो वारंट्स वापस अदालत औरत की बाजियाबी बाबत दरख्वास्त वापस वन सख्त कावड़ जो इजहार किया। पुलिस दबाव विझी दरख्वास्त वापस नहीं कराए सके। अदालत जो डीआईजी नासिर आफ्ताब पठान के नारी 10 अक्टूबर तक बाजियाब कराए पेश करने जो हुक्म। फैज़गंज के कंबर में शहरन जहां बदमनी खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना कंबर में वधंदड़ खिलाफ मेहरान हाईवे से शामियाना हणी धरनो हयो वियो। पुलिस खिलाफ नारेबाजी अगवान जो चवण है तो फैज़गंज जो अमन तबाह थी वो है। पुलिस द्वारा खिलाफ कार्रवाई नथी करे। उडरुला स्टेशन में मालगाड़ी से हादसे सबब मुअत्तल थियल अप एंड डाउन ट्रैक बहाल नथी सघिया। ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन से भी थियल मुसाफिरन के रहल भाड़ा वापस कया व्या। मालगाड़ी के ट्रैक तां हटाण ऐं रेलवे ट्रैफिक बहाल करण जूं कोशिशूं जारी। कराकोरम तेज़गांव ऐं पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत ॿियूं ट्रेन मुख़्तलिफ़ स्टेशन ते बि थियल। ट्रेन जी अचवञ 24 कलाकनि ताईं मुअतल रहंदी। कराची में 34 साल अॻु सरकारी बस जे टकर में मादूर थियल शख़्स खे 1 करोड़ ॾंढ भरे ॾियण जो हुकुम। सीनियर सिविल जज ॾखण जी अदालत 34 साल अॻु रोड हादसे में मादूर भरियल शख़्स जी हर्जाणे वारी दावा ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। किशन लाल कोरंगीअ में सरकारी बस जे टकर सबब मादूर थी वियो हो। अदालत चयो त रिकॉर्ड मां साबित थिए थो त हादसो ड्राइवर जी गफ़लत सबब पेश आयो। सरकारी बस हादसे जी ज़िमेवारी सिंध हुकूमत ते बि लागू थिए थी। अदालत जो सिंध हुकूमत ऐं लाॻापियल धुरियुनि खे 3 महीननि अंदरि फरियादीअ खे 1 करोड़ रुपया हर्जाणो भरे ॾियण जो हुकुम। कराची जी अदालत मंशिया डीलर अनमोल उर्फ बिनके जे गिरफ़्तार भाउ खे वधीक 2 केसिस में 1 ॾींहं जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस जवाबदार खे रिमांड जे लाइ अदालत में पेश कयो। जांच ऑफिसर मूजिब जवाबदार खे 18 जुलाई ते गिरफ़्तार करे 2 किलो 60 ग्राम चरस हथ कयो वियो हो। कराची जे इलाइक़े नाज़माबाद मां 2 ॾींहं अॻु अॻवा कयल 2.5 वरियनि जो बारड़ो बाज़ियाब। पुलिस जो चवण आहे त बारड़े अज़ान खे ठटो वेझो कारो कार्रवाई करे बाज़ियाब करायो वियो। आई जी सिंध

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ईरान ए अमरीका जा एक बे ते नए डी भी शदीद हमला अमरीकी फिजाई हमलन जो दायरो सिस्तान बलोचिस्तान ए खोजिस्तान ते पखड़जी वयो माशहर बंदर अमाम तब्रेज बोशहर हरमुस्कान जासिक ए चाबहार में भी हमला किया वया ईरान पारा भी उर्दन के अकबा एयरपोर्ट अमरीकी जहाजन के निशानो बढ़ाने की दावा कोवैत के अली सालम अमरीकी हवाई अड्डे ते भी ड्रोन हमलों रेडार गोदाम MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह किया वया अमरीका इराक में एक अमरीकी फौजी मार्जन की दस्ती कर छी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: तबाह क्या अमेरिका इराक में एक अमेरिकी फौजी मार्चेंट शिप तस्ती करे छिड़ी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सुनिए

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

culero.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: यमन जे होसी बागन सऊदी अरब जी नाकाबंदी जो ऐलान करे छो। होसी बागन जे तर्जमान इंसारुल जो चवण आहे त सऊदी अरब सनआ एयरपोर्ट ई हमलो कयो, जवाब में असां बि बहरी नाकाबंदी कई आहे, अख जे बदले अख वारे असूल ते क़ाइम आहियूं। होसी बागन जी नाकाबंदीअ खां पोइ इलाइक़े में छिकताण वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां धारदार मुलाक़ातूं। कैनेडा मां किनोला जी पाकिस्तान दरआमद जे प्रोटोकॉल ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं कैनेडा विच में दोस्ताना लाॻापा आहिनि, वापार सीड़पकारी ऐं ज़राअत जे शोबनि में वधीक सहकार जी ज़रूरत आहे। कैनेडा जे वज़ीर आज़म सां जल्द मुलाक़ात जो मुंतज़िर आहियां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो चवणो हो त कैनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाॻापन जो क़ीमती असासो आहे, ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा मौजूदु आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान कैनेडा सां लाॻापन खे सभिनी शोबनि में हथी ॾियणु चाहे थो। कैनेडियन परॾेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौरु वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे, ज़राअत सनअत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा वसी इम्कान मौजूदु आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
5: GFM 90.8।

यमन जे हुसी बागिन सऊदी अरब जी नाकाबंदी जो ऐलान करे छॾियो। हुसी बागिन जे तर्जमान अंसारुल्लाह जो चवण आहे त सऊदी अरब सना एयरपोर्ट ते हमलो कयो। जवाब में असां बि बहिरी नाकाबंदी कई आहे। अख जे बदिले अख वारे असूल ते क़ाइमु आहियूं। हुसी बागिन जी नाकाबंदी खां पोइ इलाइक़े में छिकताण वधी वई।